0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में दाख बारी में काम करने वाले मजदूरों के दृष्टांत पर चिंतन किया और इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि ईश्वर के रास्ते हमारे रास्ते नहीं हैं और उनकी योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 20 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nella liturgia di oggi il Signore per bocca del profeta Isaia ci dona un grande motivo di speranza.
0: आज की धर्मविधि में नबी इसाईस के द्वारा प्रभु हमें एक महान आशा प्रदान करते हैं। यह बतलाते हुए कि उनके विचार हमारे विचार नहीं हैं और उनके मार्ग हमारे मार्ग नहीं। संत पापा ने कहा,
1: सी i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
0: जी हाँ, ईश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं और हम कह सकते हैं अधिक मानवीय उन योजनाओं से जो हम पापी सोचते या पूरा करते हैं। इसलिए नबी की पुकार जो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम अपने बिगड़े हुए रास्ते छोड़ दें और प्रभु के पास लौट आएं जो दयालु और क्षमाशील हैं।
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, सुसमाचार में यीशु का दृष्टांत बताता है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या नया रखा है, लेकिन वह यह भी दर्शाता है कि हम आम तौर पर अधिक उदार न्याय एवं अधिक प्यार का विरोध करते हैं। हम विशेषकर दाख बारी में काम करने के लिए बुलाए गए मजदूरों के दृष्टांत में सुनते हैं, जिसमें कुछ मजदूर पूरे दिन के लिए काम करते हैं, कुछ सिर्फ कुछ घंटों के लिए और कुछ सिर्फ सूरज डूबने से पहले। लेकिन दृष्टांत का केंद्र बिंदु मजदूरी देने के पल में है, जब भूमि के मालिक सुबह से काम करने वाले मजदूरों से अपना वादा निभाते और उन्हें तय मजदूरी देते हैं, जबकि वे चाहते हैं कि वे उनकी अच्छाई देखें और उनकी आँखों के सामने अंत में आए मजदूरों के साथ भी समानता का व्यवहार करते हैं। संत पापा ने दृष्टांत की दूसरी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हुए कहा,
1: Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: जमीन का मालिक प्रबंधक को एक विशेष आदेश देता है कि मजदूरों को अंतिम से शुरू करके पहले तक वेतन दिया जाए। जिन लोगों ने पूरे दिन काम किए थे उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से आसानी से बचा जा सकता था, लेकिन इसे जानबूझकर किया गया क्योंकि ईश्वर की अच्छाई सबके लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। ईश्वर के पास अलग अलग तरीके और नए विचार हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो खुद को पहला मानते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है उसके वे ही हकदार हैं। लेकिन इसके विपरीत हम तभी आनंद, प्रज्ञा और एक बेहतर भविष्य प्राप्त करते हैं जब प्यार का नियम हिसाब किताब को रोकता है, जब दया का अनुभव योग्यता को बढ़ाता है और जब शांति का वरदान दुश्मनी को खत्म करके हमें कृतज्ञता के द्वारा एक दूसरे के करीब लाता है। संत पापा ने विश्वासों से कहा,
1: Fratelli sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: भाइयों एवं बहनों, ईश्वर के साथ काम करने वाले बनना, उनकी दाख बारी में मेहनत करना, उनके न्याय एवं शांति के राज की सेवा करना सच में एक कृपा है। जहाँ ईश्वर की नई चीजें सामने आती हैं, वहाँ जलन या फूट के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए जब तक प्रभु मिल सकते हैं हम उन्हें ढूंढें, जब तक वे पास हैं हम उन्हें पुकारें, हम टेढ़े मेढ़े रास्तों और बुरे विचारों को छोड़ दें। तब संत पापा ने माता मरियम की याद करते हुए कहा,
1: Guardiamo alla nostra madre santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: आइए हम हमारी अति प्यारी माँ की ओर देखें, क्योंकि वे भी हमारी तरह श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन निष्कलंक हैं, इस तरह वे हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और खुद को उनकी दया पर सुपुर्द करने में मदद करेंगे, ताकि उनके तरीके हमारे तरीके बन सकें और उनके विचार हमारे विचार बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने सोमालिया के इलाकों में हिंसा खत्म करने और चल रहे मानवीय संकट में मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Seguo con grande preoccupazione.
0: मैं सोमालिया के कुछ हिस्सों में हो रहे मानवीय संकट पर बहुत चिंता के साथ नजर रख रहा हूं, जहां हिंसा और खराब मौसम की घटनाएं लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के पहले से ही खराब रहन सहन को और खराब कर रही हैं। हाल के महीनों में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने इस अफ्रीकी देश के लिए अपनी मानवीय मदद में भारी कमी की है। मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा है कि उनके पहले से कम किए गए बजट का सिर्फ एक तिहाई ही फंड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य सामग्री की मदद भी कम कर दी है, जिससे 2026 में 2 मिलियन लोगों की मदद से सिर्फ 6 लाख लोगों की मदद हो पाएगी। 2026 में पूरे इलाके में बारिश औसत से काफी कम रही है, जिसकी वजह से कई परिवार पानी की तलाश में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने दानदाताओं से मुद्दुग इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण सेवाओं को फिर से शुरू करने और बढ़ाने में मदद करने की अपील की है, जहां 70 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं। 1991 में मोहम्मद सायद बर्रे के पतन के बाद से सोमालिया में आंतरिक लड़ाई जारी है और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गांव के इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद जताते हुए कहा,
1: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
0: मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दिल खोलकर शामिल होगी, ताकि हमारे इन भाइयों और बहनों को आवश्यक मदद की कमी ना हो। इसके बाद संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 21 सितंबर को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में संत पापा लियो 14वें ने इटली की कपुचिन गरीब क्लारा धर्म बहनों के संघ की सभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की। सहृदय स्वागत करते हुए संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपसे मिलकर और चिंतन के इस पल को आपके साथ साझा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ख्रिस्तियों को अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीने के लिए संत पौलुस के निमंत्रण पर विचार करते हुए संत पापा ने धर्म बहनों को चिंतनशील प्रार्थना, गरीबी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करते हुए निष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा, यह निष्ठा का आह्वान है जिसका जवाब आपका संघ संत क्लारा और संत फ्रांसिस की आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुसार देता है। चिंतनशील प्रार्थना, सादगी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करके इस सिलसिले में संविधान को संशोधित और अपडेट करने के लिए आपने जो काम किया है, इसमें कई लोगों के योगदान को शामिल किया गया है, वह तारीफ के काबिल है। इनमें फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी धर्म बहनों का पहला और मुख्य कर्तव्य ईश्वरीय सच्चाइयों पर चिंतन करना और प्रार्थना के जरिए ईश्वर से लगातार जुड़े रहना है। बुलाहट में कमी को देखते हुए संत पापा ने उन्हें भी वही बात फिर से याद दिलाया जो उन्होंने इटली धर्म प्रांतों और सेमिनरी धार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों के भविष्य के बारे में कहा था। संत पापा ने कहा, आइए इस वास्तविकता पर विचार करते हुए परिपेक्ष्य बदलने का प्रयास करें। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे वास्तव में हमें अप्रत्याशित क्षमता को खोजने या फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं। संख्यात्मक ताकत के संबंध में नहीं, बल्कि प्रस्ताव की गुणवत्ता के संबंध में समुदायों की संख्या में कमी और इसके कारण अपनी स्वायत्तता खोने का डर उन्हें परेशान या निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे उनके जीवन जीने के तरीके में नयापन आना चाहिए और मठ के दरवाजों पर आने वालों को आध्यात्मिक सहारा देने के प्रति उनका संकल्प और भी मजबूत होना चाहिए। आगे संत पापा ने कहा कि संत क्लारा की धर्म बहनों के तौर पर आपके पास एक खास संदेश है जिसे आपको फैलाना है। यह संदेश मुख्य रूप से नियम और संविधान का पालन करके दिया जाता है। दुनिया की सभी चीजों को पीछे छोड़कर सुसमाचार के अनुसार जीना और अपने जीवन के पहले और एकमात्र प्रेम की ओर पूरी तरह और लगातार मुड़े रहना आपके अस्तित्व और मिशन का अहम हिस्सा है। इसमें सादगी, भौतिक चीजों से मोह न रखना, आज्ञाकारिता में खुद को समर्पित करना और पारदर्शिता शामिल है। इसका मतलब है कि एक ऐसा जीवन जीना जो सरल तो हो लेकिन साथ ही क्रांतिकारी और चुनौतीपूर्ण भी, वफादारी की एक अनमोल निशानी, खासकर आज की इस ग्लोबलाइज्ड और बेचैन दुनिया में जिसमें जड़े जमाने की इच्छा और काबिलियत खो गई लगती है। मैं आपके जीवन यात्रा के लिए इन तरीकों को पक्के रास्ते के तौर पर आपके सामने रखता हूँ। एक दूसरे की बात सुनना, एक मकसद के लिए साथ आना ताकि अकेलेपन से बचा जा सके, सेवा करना और साथ मिलकर काम करना और सुसमाचार की गवाही देना। उधर रविवार 20 सितंबर को स्लोवाकिया भर से हजारों लोग जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च हेतु ब्रातिस्लावा में एकत्रित हुए। संत पापा लियो 14वें ने प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च प्रार्थना और गवाही का एक ऐसा पल बने जो जीवन के उस अनमोल तोहफे के प्रति नई जागरूकता जगाए जो हमें ईश्वर से मिला है और जिसका गर्भधारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक हर चरण में स्वागत और संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो विशेष रूप से सबसे कमजोर और असहाय लोगों का ख्याल रखे और इस तरह एकजुटता पर आधारित एक अधिक भाईचारे वाले समाज के निर्माण में योगदान दें। वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए स्लोवाक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव
फादर इवान रुसिका ने मार्च के लिए संत पापा के समर्थन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर मानव के जीवन की गरिमा के लिए खड़े होने हेतु एक साथ आए हैं। फादर रुजिका ने कहा कि मार्च का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की सहायता के साथ अजन्मे बच्चों की सुरक्षा को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हम स्लोवाकिया में सरोगेसी पर पूरी तरह कानूनी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका में कानून बनाने वालों से मांग की गई है कि वे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बच्चा पैदा करने वाले सभी समझौतों पर रोक लगाएं। उधर मालावी की कैथोलिक कलीसिया ने धर्म प्रचार के 125 साल पूरे होने का समारोह डेडजा धर्म प्रांत के संत मरिया नजामा पल्ली में पवित्र मिसा समारोह के साथ मनाया। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां 1901 में मोंटफोर्ट मिशनरियों ने मालावी में पहला स्थायी कैथोलिक मिशन स्थापित किया था। पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस नुआचुकु ने की, जो परम धर्मपीठ सुसमाचार प्रचार विभाग के सचिव और जुबली समारोहों के लिए संत पापा लियो 14वें के विशेष प्रतिनिधि थे। इस समारोह के दौरान डीकन तिमोथी और पीटर बेंगो का पुरोहिताभिषेक भी किया गया। इससे कलीसिया के मिशनरी अतीत की यादों को मलावी में उसके जारी मिशन से जोड़ा गया। उधर रूस में 3 दिन तक चलने वाले संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ लड़ाई जारी है और रूस के चुनावी सिस्टम पर हमलों की खबरें भी आ रही हैं। यह चुनाव मॉस्को द्वारा 4 साल से पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से पहला संसदीय चुनाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन वोट डाला, जबकि देश भर में मतदाता पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मॉस्को में ऑनलाइन वोटिंग व्यवस्था पर रात भर जबरदस्त हमला हुआ। सरकारी मीडिया ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों को अब तक सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संदेश में दाख बारी में काम करने वाले मजदूरों के दृष्टांत पर चिंतन किया और इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि ईश्वर के रास्ते हमारे रास्ते नहीं हैं और उनकी योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 20 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: आज की धर्मविधि में नबी इसाया के द्वारा प्रभु हमें एक महान आशा प्रदान करते हैं। यह बतलाते हुए कि उनके विचार हमारे विचार नहीं हैं और उनके मार्ग हमारे मार्ग नहीं। संत पापा ने कहा,
1: सी, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
0: जी हाँ, ईश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं और हम कह सकते हैं अधिक मानवीय उन योजनाओं से जो हम पापी सोचते या पूरा करते हैं। इसलिए नबी की पुकार जो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम अपने बिगड़े हुए रास्ते छोड़ दें और प्रभु के पास लौट आएं जो दयालु और क्षमाशील है।
1: Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, सुसमाचार में यीशु का दृष्टांत बताता है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या नया रखा है, लेकिन वह यह भी दर्शाता है कि हम आम तौर पर अधिक उदार न्याय एवं अधिक प्यार का विरोध करते हैं। हम विशेषकर दाख बारी में काम करने के लिए बुलाए गए मजदूरों के दृष्टांत में सुनते हैं, जिसमें कुछ मजदूर पूरे दिन के लिए काम करते हैं, कुछ सिर्फ कुछ घंटों के लिए और कुछ सिर्फ सूरज डूबने से पहले। लेकिन दृष्टांत का केंद्र बिंदु मजदूरी देने के पल में है।

0: काम किए थे, उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से आसानी से बचा जा सकता था, लेकिन इसे जानबूझकर किया गया, क्योंकि ईश्वर की अच्छाई सबके लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। ईश्वर के पास अलग अलग तरीके और नए विचार हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो खुद को पहला मानते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है उसके वे ही हकदार हैं। लेकिन इसके विपरीत हम तभी आनंद, प्रज्ञा और एक बेहतर भविष्य प्राप्त करते हैं जब प्यार का नियम हिसाब किताब को रोकता है, जब दया का अनुभव योग्यता को बढ़ाता है और जब शांति का वरदान दुश्मनी को खत्म करके हमें कृतज्ञता के द्वारा एक दूसरे के करीब लाता है। संत पापा ने विश्वासियों से कहा,
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: भाइयों एवं बहनों, ईश्वर के साथ काम करने वाले बनना, उनकी दागपारी में मेहनत करना, उनके न्याय एवं शांति के राज की सेवा करना सच में एक कृपा है। जहाँ ईश्वर की नई चीजें सामने आती हैं, वहाँ जलन या फूट के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए जब तक प्रभु मिल सकते हैं, हम उन्हें ढूंढें, जब तक वे पास हैं हम उन्हें पुकारें, हम टेढ़े मेढ़े रास्तों और बुरे विचारों को छोड़ दें। तब संत पापा ने माता मरियम की याद करते हुए कहा,
1: Guardiamo alla nostra madre santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia. Perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri.
0: आइए हम हमारी अति प्यारी माँ की ओर देखें, क्योंकि वे भी हमारी तरह श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन निष्कलंक हैं। इस तरह वे हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और खुद को उनकी दया पर सिपोत करने में मदद करेंगे, ताकि उनके तरीके हमारे तरीके बन सकें और उनके विचार हमारे विचार बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने सोमालिया के इलाकों में हिंसा खत्म करने और चल रहे मानवीय संकट में मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Seguo con grande preoccupazione.
0: मैं सोमालिया के कुछ हिस्सों में हो रहे मानवीय संकट पर बहुत चिंता के साथ नजर रख रहा हूँ, जहाँ हिंसा और खराब मौसम की घटनाएं लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों के पहले से ही खराब रहन सहन को और खराब कर रही हैं। हाल के महीनों में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने इस अफ्रीकी देश के लिए अपनी मानवीय मदद में भारी कमी की है। मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा है कि उनके पहले से कम किए गए बजट का सिर्फ एक तिहाई ही फंड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने खाद्य सामग्री की मदद भी कम कर दी है, जिससे 2026 में 2 मिलियन लोगों की मदद से सिर्फ 6 लाख लोगों की मदद हो पाएगी। 2026 में पूरे इलाके में बारिश औसत से काफी कम रही है, जिसकी वजह से कई परिवार पानी की तलाश में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने दानदाताओं से मुद्दुग इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कुपोषण सेवाओं को फिर से शुरू करने और बढ़ाने में मदद करने की अपील की है, जहां 70 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए हैं। 1991 में मोहम्मद सायद बर्रे के पतन के बाद से सोमालिया में आंतरिक लड़ाई जारी है और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गांव के इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद जताते हुए कहा,
1: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale.
0: मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें दिल खोलकर शामिल होगी ताकि हमारे इन भाइयों और बहनों को आवश्यक मदद की कमी ना हो। इसके बाद संत पापा ने रोम तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 21 सितंबर को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में संत पापा लियो 14वें ने इटली की कपुचिन गरीब क्लारा धर्म बहनों के संघ की सभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की। सहृदय स्वागत करते हुए संत पापा ने उनसे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपसे मिलकर और चिंतन के इस पल को आपके साथ साझा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ख्रिस्तियों को अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीने के लिए संत पौलुस के निमंत्रण पर विचार करते हुए संत पापा ने धर्म बहनों को चिंतनशील प्रार्थना, गरीबी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करते हुए निष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा, यह निष्ठा का आह्वान है जिसका जवाब आपका संघ संत क्लारा और संत फ्रांसिस की आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुसार देता है। चिंतनशील प्रार्थना, सादगी और सुसमाचार का पूरी तरह से पालन करके इस सिलसिले में संविधान को संशोधित और अपडेट करने के लिए आपने जो काम किया है, इसमें कई लोगों के योगदान को शामिल किया गया है, वह तारीफ के काबिल है। इनमें फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी धर्म बहनों का पहला और मुख्य कर्तव्य ईश्वरीय सच्चाइयों पर चिंतन करना और प्रार्थना के जरिए ईश्वर से लगातार जुड़े रहना है। बुलाहट में कमी को देखते हुए संत पापा ने उन्हें भी वही बात फिर से याद दिलाया जो उन्होंने इटली धर्म प्रांतों और सेमिनरी धार्मिक प्रशिक्षण संस्थानों के भविष्य के बारे में कहा था। संत पापा ने कहा, आइए इस वास्तविकता पर विचार करते हुए परिपेक्ष्य बदलने का प्रयास करें। इसके महत्वपूर्ण मुद्दे वास्तव में हमें अप्रत्याशित क्षमता को खोजने या फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं। संख्यात्मक ताकत के संबंध में नहीं, बल्कि प्रस्ताव की गुणवत्ता के संबंध में समुदायों की संख्या में कमी और इसके कारण अपनी स्वायत्तता खोने का डर उन्हें परेशान या निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे उनके जीवन जीने के तरीके में नयापन आना चाहिए और मठ के दरवाजों पर आने वालों को आध्यात्मिक सहारा देने के प्रति उनका संकल्प और भी मजबूत होना चाहिए। आगे संत पापा ने कहा कि संत क्लारा की धर्म बहनों के तौर पर आपके पास एक खास संदेश है जिसे आपको फैलाना है। यह संदेश मुख्य रूप से नियम और संविधान का पालन करके दिया जाता है। दुनिया की सभी चीजों को पीछे छोड़कर सुसमाचार के अनुसार जीना और अपने जीवन के पहले और एकमात्र प्रेम की ओर पूरी तरह और लगातार मुड़े रहना आपके अस्तित्व और मिशन का अहम हिस्सा है। इसमें सादगी, भौतिक चीजों से मोह न रखना, आज्ञाकारिता में खुद को समर्पित करना और पारदर्शिता शामिल है। इसका मतलब है कि एक ऐसा जीवन जीना जो सरल तो हो लेकिन साथ ही क्रांतिकारी और चुनौतीपूर्ण भी, वफादारी की एक अनमोल निशानी, खासकर आज की इस ग्लोबलाइज्ड और बेचैन दुनिया में जिसमें जड़े जमाने की इच्छा और काबिलियत खो गई लगती है। मैं आपके जीवन यात्रा के लिए इन तरीकों को पक्के रास्ते के तौर पर आपके सामने रखता हूँ। एक दूसरे की बात सुनना, एक मकसद के लिए साथ आना ताकि अकेलेपन से बचा जा सके, सेवा करना और साथ मिलकर काम करना और सुसमाचार की गवाही देना। उधर रविवार 20 सितंबर को स्लोवाकिया भर से हजारों लोग जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च हेतु ब्रातिस्लावा में एकत्रित हुए। संत पापा लियो 14वें ने प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीवन के लिए राष्ट्रीय मार्च प्रार्थना और गवाही का एक ऐसा पल बने जो जीवन के उस अनमोल तोहफे के प्रति नई जागरूकता जगाए जो हमें ईश्वर से मिला है और जिसका गर्भधारण से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक हर चरण में स्वागत और संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो विशेष रूप से सबसे कमजोर और असहाय लोगों का ख्याल रखे और इस तरह एकजुटता पर आधारित एक अधिक भाईचारे वाले समाज के निर्माण में योगदान दें। वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए स्लोवाक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव
फादर इवान रुजिका ने मार्च के लिए संत पापा के समर्थन हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर मानव के जीवन की गरिमा के लिए खड़े होने हेतु एक साथ आए हैं। फादर रुजिका ने कहा कि मार्च का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की सहायता के साथ अजन्मे बच्चों की सुरक्षा को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हम स्लोवाकिया में सरोगेसी पर पूरी तरह कानूनी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका में कानून बनाने वालों से मांग की गई है कि वे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बच्चा पैदा करने वाले सभी समझौतों पर रोक लगाएं। उधर मालावी की कैथोलिक कलीसिया ने धर्म प्रचार के 125 साल पूरे होने का समारोह डेडजा धर्म प्रांत के संत मरिया नजामा पल्ली में पवित्र मिसा समारोह के साथ मनाया। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां 1901 में मोंटफोर्ट मिशनरियों ने मालावी में पहला स्थायी कैथोलिक मिशन स्थापित किया था। पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस नुआचुकु ने की, जो परम धर्मपीठीय सुसमाचार प्रचार विभाग के सचिव और जुबली समारोहों के लिए संत पापा लियो 14वें के विशेष प्रतिनिधि थे। इस समारोह के दौरान डीकन तिमोथी और पीटर बेंगो का पुरोहिताभिषेक भी किया गया। इससे कलीसिया के मिशनरी अतीत की यादों को मलावी में उसके जारी मिशन से जोड़ा गया। उधर रूस में 3 दिन तक चलने वाले संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन के साथ लड़ाई जारी है और रूस के चुनावी सिस्टम पर हमलों की खबरें भी आ रही हैं। यह चुनाव मॉस्को द्वारा 4 साल से पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से पहला संसदीय चुनाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन वोट डाला, जबकि देश भर में मतदाता पोलिंग स्टेशन पर कतार में खड़े थे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि मॉस्को में ऑनलाइन वोटिंग व्यवस्था पर रात भर जबरदस्त हमला हुआ। सरकारी मीडिया ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों को अब तक सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: पृथ्वीतोम अवृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: हे मरियम
1: की
0: की प्रार्थना द्वारा
1: हमको इस लोक
0: से दुख से मुक्त होकर
1: अनंत सुख
0: भोगने दे,
1: क्रिस्त
0: हमारे प्रभु
1: के
0: द्वारा,
1: आमेन।
0: पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। अपने विगत प्रसारण के अंत में हमने वर्तमान के धर्म सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने सामाजिक विश्व पत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्मानित करता और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। श्रोताओं, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने करुणा को अपने विश्लेषण के केंद्र बिंदु में यह कहते हुए रखा कि यह कलिसे के सामाजिक धर्म सिद्धांत का हृदय है, बशर्ते कि यह सदैव सत्य से संयुक्त हो। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हम अपने बीच में नैतिक आवश्यकताओं के भाव को अपने से दूर करते हैं, विशेषकर सामाजिक, संवैधानिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के अंदर। उनकी बातों की वास्तविकता इस बात पर आधारित है कि विकास, न्याय, संस्थाने और बाजार अपने में तटस्थ वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि वे स्थल हैं जहां असल में करुणा को ऐतिहासिक रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। यह शिक्षा आज खासकर बढ़ती हुई असमानता, वित्तीय बाजार में दबाव, पर्यावरण संकट और राजनीति में विकास की कमी के आलोक में महत्वपूर्ण है। यह विकास की हर शैली का मूल्यांकन करने हेतु एक निमंत्रण देता है कि वह कितना समावेशी और टिकाऊ है। साथ ही यह आम भलाई के आधार पर अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच के रिश्ते को फिर से बनाने और सार्वजनिक जीवन में करुणा की तर्कपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को स्वीकारने का भी आह्वान करता है। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस की सामाजिक शिक्षा का विकास गौडियम एट स्पेस के संदर्भ में होता है, जो हमें इतिहास को मानवीय आशाओं और संवेदनशीलताओं के आधार पर देखने का निमंत्रण देता और उन्हें सुसमाचार के संग वार्ता करने हेतु लाने की मांग करता है। यह शैली विशेष रूप से एवंजेली गौडियम में स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, जहां वे इस बात को घोषित करते हैं कि ख्रिस्तीय घोषणा कलिसिया का एक आंतरिक सामाजिक आयाम है, जो उन्हें गरीबी, प्रवासियों और किसी भी नए रूप में गुलामी के शिकारों की पुकार को सुनने का आह्वान करती है। संत पापा फ्रांसिस एक सिनोडल कलिसिया के बारे में जोर देते हैं, एक कलिसिया जो एक साथ चलती है, जो समय की निशानियों को सुसमाचार के आलोक में देखती और अपने को दरिद्रों द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने देती है, जिसके द्वारा वह अपने इतिहास को साझा करती है, साथ ही उस परिदृश्य में अपने को सुलभ पाती है। श्रोताओं, लौदातो सी में संत पापा फ्रांसिस पर्यावरण की सुव्यवस्थित देखरेख हेतु एक प्रथम विशेष सामाजिक विश्व पत्र प्रस्तुत करते हैं। वे हमें यह दिखलाते हैं कि यह कोई अलग विषय वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे समकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था के संकट का पारिस्थितिकी पहलू है। पारिस्थितिकी की संपूर्णता, जो हमारे सामान्य निवास की देखरेख से संयुक्त है, जहां हम विशेषकर अपने लिए गरीबों के विकल्प को पाते हैं, हमारे लिए सुदृढ़ता में इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वी की पुकार और गरीबों का रुदन अपने में अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके आलोक में चीजों के सार्वभौमिक उद्देश्य को प्रमुखता दी गई, साथ ही उस तकनीकी प्रधान सोच की भी आलोचना की गई, जो हर चीज को केवल नियंत्रण करने की वस्तु मानती है। बर्बादी वाले सोच से खतरे में पड़ी इंसानी मेहनत का बचाव किया गया और पीढ़ियों के बीच न्याय की जरूरत पर जोर दिया गया। अंत में उन्होंने उन लोगों के मध्य सच्ची वार्ता की बात सुझाई जो राजनीति और वित्त के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिससे कोई भी अपने को संदर्भित ना करे। श्रोताओं, सामाजिक ताने बाने के टूटने की स्थिति में एक विश्व युद्ध जो टुकड़ों में लड़ा जा रहा है, व्यक्तिगत वैश्वीकरण और समुदायों में महामारी के प्रभाव की स्थिति में संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती में एक मानवता के सपने को पुनर्जागृत करने की चाह रखी, जो सामाजिक मित्रता और वैश्विक भ्रातृत्व का चुनाव करती है। उन्होंने एक मिलन की संस्कृति का सुझाव दिया, एक बेहतर राजनीति जो सबों के लिए हित की चाह रखती हो, जो मेल मिलाप के मार्गों का चुनाव करती और एक ऐसी दुनिया को सुनिश्चित करती हो जिसमें सबों के लिए जमीन, निवास स्थल और रोजगार प्राप्त होता हो। अंततः दिल एक्सित नोस में उन्होंने यह व्यक्त किया कि ये सारी विशेष प्रयास यीशु ख्रिस्त के संग हमारे व्यक्तिगत संबंध को अलग नहीं कर सकते हैं। ईश वचनों की ओर अभिमुख होते हुए उन्होंने हमें याद दिलाया कि यीशु के हृदय के प्रति सच्चा प्रेम हमारे लिए अपने भाई बहनों को ठोस रूप में प्रेम करने में अभिव्यक्त होता है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने की अपेक्षा हमारे लिए और कोई बड़ा मार्ग नहीं है। श्रोताओं, इस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य पर चिंतन करना यह स्पष्ट करता है कि कलिसे की सामाजिक धर्म सिद्धांत मेज में बैठे हुए एक परियोजना का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया की उत्पत्ति है, जिसमें हर परम धर्माध्यक्ष ने द्वितीय वैटिकन महासभा के संग नई चीजों के संबंध में हर विशेष अवधि में अपनी ओर से एक विशेष सहयोग प्रदान किया है। उनके समय की चुनौतियों के संबंध में हर एक ने ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार के अनुरूप परिभाषित करते हुए एक विरासत की विभिन्न बातों को प्रकाश में लाया। मानव का सम्मान, कार्य का मूल्य, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, एकता और पूरकता, सृष्टि की देखरेख और शांति तथा भ्रातृत्व की महत्वपूर्णता, इसके परिणाम स्वरूप हम एकतामय विकास को पाते हैं, यद्यपि यह सदैव सीधा नहीं होता है, जो विभिन्न बातों, प्रगतिशील विचार और कभी कभी दृष्टिकोणों में परिवर्तन पर जोर देता।

आत्ममंथन को दिशा निर्देशित करती है। और अब मैं अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहता हूँ, संत पापा कहते हैं, ताकि हम अपने आपसी तालमेल और हमारे समय की दिशा देने की उसकी क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 1 अक्टूबर को रोम के पल्लियों और स्कूलों के 700 से 1000 बच्चे वैटिकन उद्यान में पोप लियो 14वें के साथ एकत्रित होंगे। ए टू द चर्च एंड नेट की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उस शाम 5 बजे वैटिकन के लूद क्रोटो में बच्चे और पोप दुनिया भर के बच्चों, परिवारों, स्कूलों और ख्रिस्त समुदायों के साथ आध्यात्मिक रूप से एकजुट होंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय से परमधम पीठ फाउंडेशन ACN इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि पहली बार 1 मिलियन बच्चे रोजरी विनती करते हुए पहल 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिससे समुदायों, परिवारों और स्कूलों को अपनी पसंद का दिन चुनने का मौका मिलेगा। इस दौरान हर समुदाय शांति और एकता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक साथ आएंगे। 7 अक्टूबर रोजरी की माता मरियम का पर्व दिवस इस सप्ताह का चरम बिंदु होगा। बोलिवियन अमेजन के आदिवासी समुदायों से लेकर सूडान, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक और युद्ध, गरीबी एवं अस्थिरता से प्रभावित कई दूसरी जगहों की कलीसियाएं भी प्रार्थना अभियान में शामिल होंगी। जिम्बाब्वे के बुलावायो महाधर्म प्रांत में सेंट क्रिस्टोफर पल्ली 4 अक्टूबर को बच्चों को शांति के लिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए इकट्ठा करेगी। इस साल की यह पहल पुर्तगाल के फातिमा में 3 बच्चों को माता मरियम के दिव्य दर्शन के दौरान मिले संदेश से प्रेरित है। अंत में मेरा बेदाग दिल ही जीतेगा। भाग लेने वालों को दिए गए एक निमंत्रण में CAN इंटरनेशनल के अध्यक्ष और ख्रिस्त एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूट कोच ने बताया कि कैसे मरियम का निष्कलंक हृदय पौत्र आत्मा के लिए पूरी तरह से खुले जीवन को दिखाता है, और उन्होंने मरियम को विश्वास, प्रार्थना और प्यार का एक उदाहरण बताया। खासकर आज की दुनिया में जब हिंसा, जुल्म, गरीबी और अस्थिरता है, यह पहल बहुत जरूरी है। अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करते और अलग अलग संस्कृति में रहने वाले बच्चों की तस्वीरें भरोसे और आशा का एक सरल लेकिन विश्वव्यापी प्रतीक है। 1 लाख बच्चे रोजरी माला विनती करते हुए पहल 2005 में वेनेजुएला में शुरू हुई थी, और यह हर महाद्वीप में बच्चों, परिवारों, पल्लियों, स्कूलों और कलीसियाई दलों के साथ एक विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क बन गई है। इटली के संत पादरी पियो के कथन ने इस पहल को प्रेरित किया है। जब 1 मिलियन

बच्चे रोजरी की प्रार्थना करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हालांकि प्रार्थना का आह्वान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। एड टू द चर्च इन नीड ने सभी माता पिताओं, शिक्षकों, पुरोहितों, धर्म संघियों, प्रचारकों और परिवारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। एड टू द चर्च इन नीड जोर देता है कि अगर पूरी रोजरी विनती करना संभव ना हो तो कम से कम एक भेद ईमानदारी पूर्वक करने से भी इस वैश्विक प्रार्थना श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। शांति में निवेश करना हर एक के लिए, हर जगह, हर दिन, यह संदेश तोम्बुरा यांबियो के धर्माध्यक्ष बिशप बर्नी एद्वार्डो हिबोरो कुसाला का है, जिन्होंने सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सूडान और दक्षिणी सूडान के कातिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के न्याय एवं शांति आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष बर्नी एद्वार्डो हिबोरो कुसाला ने फिदेस एजेंसी को भेजे एक बयान में लिखा, शांति सिर्फ युद्ध न होने से कहीं अधिक है। इसके लिए न्याय, समानता, सुरक्षा, मेल मिलाप और भरोसा फिर से बनाने की हिम्मत चाहिए। हमारे लोग बहुत लंबे समय से घाव सह रहे हैं, लेकिन हमारे घाव हमारे इतिहास का हिस्सा है। शांति वह विरासत है जो हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए। यह संदेश उन लोगों के अनुभव से निकला है जो संघर्ष, विस्थापन, दर्द और डर से जूझ रहे हैं, लेकिन धर्माध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि वे उम्मीद जारी रखे हैं। इसलिए वे हिंसा के शिकार लोगों, विस्थापित परिवारों, शरणार्थियों, डर में बड़े हो रहे बच्चों और उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं जो अभी भी संघर्ष के घावों को झेल रहे हैं। सूडान और दक्षिण सूडान के इस नाजुक समय में धर्माध्यक्ष हिबोरा समाज के सभी लोगों, राजनीतिक नेता, नागरिक, धर्म संघी और पारंपरिक अधिकारी, महिलाओं और युवाओं को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हमारी विविधताएं कभी भी हिंसा का कारण ना बने, झगड़े की जगह बातचीत होनी चाहिए और जनता के अधिकारों को आम भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनकी अपील चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है जिसके लिए दोनों देश तैयारी कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष कहते हैं, हर नागरिक की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान किया जाए और राजनीतिक हिस्सेदारी शांतिपूर्ण और डर, धमकी एवं हिंसा से मुक्त होने की अपील करते हैं। वे आगे कहते हैं, राजनीतिक असहमति से कभी भी किसी पड़ोसी को दुश्मन नहीं बनानी चाहिए। अडोम्बुरा यांबियो के धर्माध्यक्ष ने खासकर युवाओं से नफरत को अस्वीकार करने के लिए कहा है। समुदायों और विविधताओं के बीच पुल बनाने, हिंसा के बजाय शिक्षा, विश्वास, सेवा और मेल मिलाप करने की सलाह दी है। बिशप हिबोरो ने सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों और शांति निर्माण के लिए समर्पित सभी लोगों को ईश्वर का भरोसा दिलाया है। ईश्वर दुखी लोगों को आराम दें, घायलों को चंगा करें, दुर्बलों की रक्षा करें, हमारे नेताओं को समझाएं और न्याय, मेल मिलाप एवं शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मजबूत करें। धर्माध्यक्ष ने अंत में कहा, सूडान को शांति मिले, दक्षिण सूडान को शांति मिले, अफ्रीका को शांति मिले, आइए हम वहीं से शुरू करें जहां शांति शुरू होती है। ईश्वर हमें अपनी शांति के माध्यम बनाएं। पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा से पहले वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष सेलेस्टिनो मिलियोरे ने कहा कि पोप की यात्रा से देश में ख्रिस्ती धर्म की फिर से खोज और येसु ख्रिस्त में दिलचस्पी बढ़ेगी और द्विधा में पड़े यूरोप को एक मजबूत संदेश जाएगा। एक ख्रिस्तीय जीवन की खूबसूरती को फिर से खोजा जा रहा है, एक ऐसा ख्रिस्तीय जीवन जो ना तो सस्ता है ना ही कमजोर, बल्कि जिससे उसकी पूरी जड़ एवं गहराई के साथ अपनाया गया है। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष सेलेस्टिनो मिलियोरे ने देश में विश्वास के नवीनीकरण को कुछ इस प्रकार बताया। राजदूत ने फ्रांसीसी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन उम्मीद के बड़े संकेतों की ओर भी इशारा किया, जिसमें फ्रांस की कलीसिया भी शामिल है। उन्होंने यूनेस्को में पोप के भाषण, रॉबर्ट शुमन के शहर मेट्स में उनके रुकने और सबसे बढ़कर उनकी इस उम्मीद के महत्व पर चर्चा की कि यह यात्रा येसु ख्रिस्त और सुसमाचार की शक्ति में इस दिलचस्पी को मजबूत करने में मदद करेगी और इन संकेतों को एक गहरी एवं स्थायी कार्तिक जागृति में बदल देगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदवे का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। अपने विगत प्रसारण के अंत में हमने वर्तमान के धर्म सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने सामाजिक विश्व पत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्मानित करता और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। श्रोताओ, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने करुणा को अपने विश्लेषण के केंद्र बिंदु में यह कहते हुए रखा कि यह कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत का हृदय है, बशर्ते कि यह सदैव सत्य से संयुक्त हो। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हम अपने बीच में नैतिक आवश्यकताओं के भाव को अपने से दूर करते हैं, विशेषकर सामाजिक, संवैधानिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के अंदर। उनकी बातों की वास्तविकता इस बात पर आधारित है कि विकास, न्याय, संस्थाने और बाजार अपने में तटस्थ वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि वे स्थल हैं जहां असल में करुणा को ऐतिहासिक रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। यह शिक्षा आज खासकर बढ़ती हुई असमानता, वित्तीय बाजार में दबाव, पर्यावरण संकट और राजनीति में विकास की कमी के आलोक में महत्वपूर्ण है। यह विकास की हर शैली का मूल्यांकन करने हेतु एक निमंत्रण देता है कि वह कितना समावेशी और टिकाऊ है। साथ ही यह आम भलाई के आधार पर अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच के रिश्ते को फिर से बनाने और सार्वजनिक जीवन में करुणा की तर्कपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को स्वीकारने का भी आह्वान करता है। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस की सामाजिक शिक्षा का विकास गौडियम एट स्पेस के संदर्भ में होता है, जो हमें इतिहास को मानवीय आशाओं और संवेदनशीलताओं के आधार पर देखने का निमंत्रण देता और उन्हें सुसमाचार के संग वार्ता करने हेतु लाने की मांग करता है। यह शैली विशेष रूप से एवंजेली गौडियम में स्पष्ट रूप से निकलकर आती है, जहां वे इस बात को घोषित करते हैं कि ख्रिस्तीय घोषणा कलीसिया का एक आंतरिक सामाजिक आयाम है, जो उन्हें गरीबी, प्रवासियों और किसी भी नए रूप में गुलामी के शिकारों की पुकार को सुनने का आह्वान करती है। संत पापा फ्रांसिस एक सिनोडल कलीसिया के बारे में जोर देते हैं, एक कलीसिया जो एक साथ चलती है, जो समय की निशानियों को सुसमाचार के आलोक में देखती और अपने को दरिद्रों द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने देती है, जिसके द्वारा वह अपने इतिहास को साझा करती है, साथ ही उस परिदृश्य में अपने को सुलभ पाती है। श्रोताओं, लौदातो सी में संत पापा फ्रांसिस पर्यावरण की सुव्यवस्थित देखरेख हेतु एक प्रथम विशेष सामाजिक विश्व पत्र प्रस्तुत करते हैं। वे हमें यह दिखलाते हैं कि यह कोई अलग विषय वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे समकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था के संकट का पारिस्थितिकी पहलू है। पारिस्थितिकी की संपूर्णता जो हमारे सामान्य निवास की देखरेख से संयुक्त है, जहां हम विशेषकर अपने लिए गरीबों के विकल्प को पाते हैं, हमारे लिए सुदृढ़ता में इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वी की पुकार और गरीबों का रुदन अपने में अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके आलोक में चीजों के सार्वभौमिक उद्देश्य को प्रमुखता दी गई, साथ ही उस तकनीकी प्रधान सोच की भी आलोचना की गई जो हर चीज को केवल नियंत्रण करने की वस्तु मानती है। बर्बादी वाले सोच से खतरे में पड़ी इंसानी मेहनत का बचाव किया गया और पीढ़ियों के बीच न्याय की जरूरत पर जोर दिया गया। अंत में उन्होंने उन लोगों के मध्य सच्ची वार्ता की बात सुझाई जो राजनीति और वित्त के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिससे कोई भी अपने को संदर्भित ना करे। श्रोताओं, सामाजिक ताने बाने के टूटने की स्थिति में एक विश्व युद्ध जो टुकड़ों में लड़ा जा रहा है, व्यक्तिगत वैश्वीकरण और समुदायों में महामारी के प्रभाव की स्थिति में संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती में एक मानवता के सपने को पुनर्जागृत करने की चाह रखी जो सामाजिक मित्रता और वैश्विक भ्रातृत्व का चुनाव करती है। उन्होंने एक मिलन की संस्कृति का सुझाव दिया, एक बेहतर राजनीति जो सबों के लिए हित की चाह रखती हो, जो मेल मिलाप के मार्गों का चुनाव करती और एक ऐसी दुनिया को सुनिश्चित करती हो जिसमें सबों के लिए जमीन, निवास स्थल और रोजगार प्राप्त होता हो। अंततः दिल एक्सित नोस में उन्होंने यह व्यक्त किया कि ये सारे विशेष प्रयास येसु ख्रिस्त के संग हमारे व्यक्तिगत संबंध को अलग नहीं कर सकते हैं। ईश वचनों की ओर अभिमुख होते हुए उन्होंने हमें याद दिलाया कि येसु के हृदय के प्रति सच्चा प्रेम हमारे लिए अपने भाई बहनों को ठोस रूप में प्रेम करने में अभिव्यक्त होता है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने की अपेक्षा हमारे लिए और कोई बड़ा मार्ग नहीं है। श्रोताओं, इस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य पर चिंतन करना यह स्पष्ट करता है कि कलीसिया की सामाजिक धर्म सिद्धांत मेज में बैठे हुए एक परियोजना का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया की उत्पत्ति है जिसमें हर परम धर्माध्यक्ष ने द्वितीय वैटिकन महासभा के संग नई चीजों के संबंध में हर विशेष अवधि में अपनी ओर से एक विशेष सहयोग प्रदान किया है। उनके समय की चुनौतियों के संबंध में हर एक ने ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार के अनुरूप परिभाषित करते हुए एक विरासत की विभिन्न बातों को प्रकाश में लाया। मानव का सम्मान, कार्य का मूल्य, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, एकता और पूरकता, सृष्टि की देखरेख और शांति तथा भ्रातृत्व की महत्वपूर्णता, इसके परिणाम स्वरूप हम एकतामय विकास को पाते हैं, यद्यपि यह सदैव सीधा नहीं होता है, जो विभिन्न बातों, प्रगतिशील विचार और कभी कभी दृष्टिकोणों में परिवर्तन पर जोर देता है, जो उन बातों को नहीं तोड़ता जो पहले से आती हैं, लेकिन उनके नतीजों को पूरी तरह सामने आने देता है। अगर आज हम एक शरीर के कुछ साझा सिद्धांतों और मापदंडों की बात कर सकते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास की इस आस्था आधारित व्याख्या में कभी कोई रुकावट नहीं आई, और यह हर पीढ़ी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा खुली रही है। यह सामाजिक धर्म सिद्धांत का वृहद सिद्धांत है जो विश्वासियों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आत्म मंथन को दिशा निर्देशित करती है। और अब मैं अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहता हूँ, संत पापा कहते हैं, ताकि हम अपने आपसी तालमेल और हमारे समय की दिशा देने की उसकी क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 1 अक्टूबर को रोम के पल्लियों और स्कूलों के 700 से 1000 बच्चे वैटिकन उद्यान में पोप लियो 14वें के साथ एकत्रित होंगे। ए टू द चर्च एंड नेट की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उस शाम 5 बजे वैटिकन के लूद क्रोटो में बच्चे और पोप दुनिया भर के बच्चों, परिवारों, स्कूलों और ख्रिस्त समुदायों के साथ आध्यात्मिक रूप से एकजुट होंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय से परमधम पीठे फाउंडेशन ACN इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि पहली बार 1 मिलियन बच्चे रोजरी विनती करते हुए पहल 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिससे समुदायों, परिवारों और स्कूलों को अपनी पसंद का दिन चुनने का मौका मिलेगा। इस दौरान हर समुदाय शांति और एकता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक साथ आएंगे। 7 अक्टूबर रोजरी की माता मरियम का पर्व दिवस इस सप्ताह का चरम बिंदु होगा। बोलिवियन अमेजन के आदिवासी समुदायों से लेकर सूडान, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक और युद्ध, गरीबी एवं अस्थिरता से प्रभावित कई दूसरी जगहों की कलीसियाएं भी प्रार्थना अभियान में शामिल होंगी। जिम्बाब्वे के बुलावायो महाधर्म प्रांत में संत क्रिस्टोफर पल्ली 4 अक्टूबर को बच्चों को शांति के लिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए इकट्ठा करेगी। इस साल की यह पहल पुर्तगाल के फातिमा में 3 बच्चों को माता मरियम के दिव्य दर्शन के दौरान मिले संदेश से प्रेरित है। अंत में मेरा बेदाग दिल ही जीतेगा। भाग लेने वालों को दिए गए एक निमंत्रण में CAN इंटरनेशनल के अध्यक्ष और ख्रिस्त एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूट कोच ने बताया कि कैसे मरियम का निष्कलंक हृदय पौत्र आत्मा के लिए पूरी तरह से खुले जीवन को दिखाता है, और उन्होंने मरियम को विश्वास, प्रार्थना और प्यार का एक उदाहरण बताया। खासकर आज की दुनिया में जब हिंसा, जुल्म, गरीबी और अस्थिरता है, यह पहल बहुत जरूरी है। अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करते और अलग अलग संस्कृति में रहने वाले बच्चों की तस्वीरें भरोसे और आशा का एक सरल लेकिन विश्वव्यापी प्रतीक है। 1 लाख बच्चे रोजरी माला विनती करते हुए पहल 2005 में वेनेजुएला में शुरू हुई थी, और यह हर महाद्वीप में बच्चों, परिवारों, पल्लियों, स्कूलों और कलीसियाई दलों के साथ एक विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क बन गई है। इटली के संत पादरे पियो के कथन ने इस पहल को प्रेरित किया है। जब 1 मिलियन बच्चे रोजरी की प्रार्थना करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हालांकि प्रार्थना का आह्वान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ए टू द चर्च इन नीड ने सभी माता पिताओं, शिक्षकों, पुरोहितों, धर्म संघों, प्रचारकों और परिवारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। ए टू द चर्च इन नीड जोर देता है कि अगर पूरी रोजरी विनती करना संभव ना हो तो कम से कम एक भेद ईमानदारी पूर्वक करने से भी इस वैश्विक प्रार्थना श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। शांति में निवेश करना हर एक के लिए, हर जगह, हर दिन, यह संदेश तोम्बुरा यांबियो के धर्माध्यक्ष बिशप बर्नी एदवार्डो हिबोरो कुसाला का है, जिन्होंने सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सूडान और दक्षिणी सूडान के कातिल धर्माध्यक्ष सम्मेलन के न्याय एवं शांति आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष बेर्नी एदवार्डो हिबोरो कुसाला ने विदेश एजेंसी को भेजे एक बयान में लिखा, शांति सिर्फ युद्ध न होने से कहीं अधिक है। इसके लिए न्याय, समानता, सुरक्षा, मेल मिलाप और भरोसा फिर से बनाने की हिम्मत चाहिए। हमारे लोग बहुत लंबे समय से घाव सह रहे हैं, लेकिन हमारे घाव हमारे इतिहास का हिस्सा है। शांति वह विरासत है जो हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए। यह संदेश उन लोगों के अनुभव से निकला है जो संघर्ष, विस्थापन, दर्द और डर से जूझ रहे हैं, लेकिन धर्माध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि वे उम्मीद जारी रखे हैं। इसलिए वे हिंसा के शिकार लोगों, विस्थापित परिवारों, शरणार्थियों, डर में बड़े हो रहे बच्चों और उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं जो अभी भी संघर्ष के घावों को झेल रहे हैं। सूडान और दक्षिण सूडान के इस नाजुक समय में धर्माध्यक्ष हिबोरा समाज के सभी लोगों, राजनीतिक नेता, नागरिक, धर्म संघी और पारंपरिक अधिकारी, महिलाओं और युवाओं को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हमारी विविधताएं कभी भी हिंसा का कारण ना बने।
झगड़े की जगह बातचीत होनी चाहिए और जनता के अधिकारों को आम भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनकी अपील चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है जिसके लिए दोनों देश तैयारी कर रहे हैं। धर्मदक्ष कहते हैं, हर नागरिक की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान किया जाए और राजनीतिक हिस्सेदारी शांतिपूर्ण और डर धमकी एवं हिंसा से मुक्त होने की अपील करते हैं। वे आगे कहते हैं, राजनीतिक असहमति से कभी भी किसी पड़ोसी को दुश्मन नहीं बनानी चाहिए। अडोम्बुरा यांबियो के धर्मदर्श ने खासकर युवाओं से नफरत को अस्वीकार करने के लिए कहा है। समुदायों और विविधताओं के बीच पुल बनाने, हिंसा के बजाय शिक्षा, विश्वास, सेवा और मेल मिलाप करने की सलाह दी है। बिशप हिबोरो ने सूडान और दक्षिण सूडान के लोगों और शांति निर्माण के लिए समर्पित सभी लोगों को ईश्वर का भरोसा दिलाया है। ईश्वर दुखी लोगों को आराम दें, घायलों को चंगा करें, दुर्बलों की रक्षा करें, हमारे नेताओं को समझाएं और न्याय, मेल मिलाप एवं शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मजबूत करें। धर्मदक्ष ने अंत में कहा, सूडान को शांति मिले, दक्षिण सूडान को शांति मिले, अफ्रीका को शांति मिले, आइए हम वहीं से शुरू करें जहां शांति शुरू होती है। ईश्वर हमें अपनी शांति के माध्यम बनाएं। पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा से पहले वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्मदर्श सेलेस्टिनो मिलियोरे ने कहा कि पोप की यात्रा से देश में ख्रिस्त धर्म की फिर से खोज और येसु ख्रिस्त में दिलचस्पी बढ़ेगी और द्विधा में पड़े यूरोप को एक मजबूत संदेश जाएगा। एक ख्रिस्त जीवन की खूबसूरती को फिर से खोजा जा रहा है, एक ऐसा ख्रिस्त जीवन जो ना तो सस्ता है ना ही कमजोर, बल्कि जिससे उसकी पूरी जड़ एवं गहराई के साथ अपनाया गया है। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्मदर्श सेलेस्टिनो मिलियोरे ने देश में विश्वास के नवीनीकरण को कुछ इस प्रकार बताया। राजदूत ने फ्रांसीसी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया लेकिन उम्मीद के बड़े संकेतों की ओर भी इशारा किया जिसमें फ्रांस की कलीसिया भी शामिल है। उन्होंने यूनेस्को में पोप के भाषण, रॉबर्ट शुमन के शहर मेट्स में उनके रुकने और सबसे बढ़कर उनकी इस उम्मीद के महत्व पर चर्चा की कि यह यात्रा येसु ख्रिस्त और सुसमाचार की शक्ति में इस दिलचस्पी को मजबूत करने में मदद करेगी और इन संकेतों को एक गहरी एवं स्थायी कार्तिक जागृति में बदल देगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।